मेरा, मैं मन मौजी मस्त नहीं हाँ, मैं कोई ऐश प्रस्त नहीं हाँ, जो कुछ लगता हाँ मैं।

जदों चमकौर दी गड़ी छड़ के आए रात दे हनेरे विच तुरदे तुरदे पातशाह माछीवाड़े दे जंगल विच पहुंचे। जामा लीरो लीर है, पैरां विच जोड़ा नहीं, वो भी किधरे

उस मंद मंद चलती हुई पवन नू हवा नू संबोधन करके कहता है, ऐ माछीवाड़े दी हवाए अज तेरे भाग जाग पए ने, ऐ माछीवाड़े दी धरती तेरी किस्मत जाग पई है, दो जहान दा वाली तेरी गोद दे विच विश्राम करन वास्ते कुछ चिर लई लेटिया है, सेवा कर ले रज रज के सेवा कर ले, आहिस्ता आहिस्ता चल मता पत्या दे खड़ाक नाल किधरे इसकी अख ना खुल जाए, पता नहीं किन्ने चिर दा उनिंदरा है, याद रख तू सेवा पई कर दी है इसकी, दुनिया तेरे इस पवित्र स्थान ते आके मत्थे चुकाया करेगी नमस्कार करेगी, क्योंकि इस धरती नू अज मेरे गुरुदेव कलगीधर पातशाह जी ने अपनी चरण छो बख्शिश करके इसके भाग जगा दिते हैं, सेवा का अवसर मिलिया है, कर ले सेवा। अखीरलियां पंक्तियां विच हवा नू संबोधन करके कहिंदा कवि

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नकनती लाए सिर्फ दो पौंडना। कानस लाने ना, एक पौंड छापा ते बंगानी कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 0124-488-935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇ

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम और 100.6 एफएम पर आप पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुन सकते हैं। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीथली, इलकली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं। और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं, तो जनाब आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 012। उस माध्यम चाहते हैं, अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप सुन रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में आप हमें सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक दो बजे तक। मिले जुले गीत होंगे, आपकी डेडिकेशन होगी, मौसम के लिहाज से आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewellers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा अरशद महमूद की प्यारी सुरीली आवाज में ये हिट ऑफ द आवर सुना, और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:14, यानी कि 11:14। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद एक मस्ती भरा गीत होगा, थोड़े मस्ती भरे गीत होंगे। काफ़ी गर्मी है आज जनाब, और तो गर्मी के लिहाज से जनाब कुछ गाने ऐसे होने चाहिए जो आपको जो है वो कूल डाउन कर सके। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: नफ्सें जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानिब, और हमें राणा नवीद साहब स्वीडन में आप इस वक्त सुन रहे हैं। शुक्रिया जनाब प्रोग्राम सुनने का, और आपके नाम आने वाला गीत करेंगे हीरा खान साहब। आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने तमाम दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहा तो जनाब आपके दोस्तों के नाम भी और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं जनाब उदय नारायण और अलका याग्निक को सुनते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज में।

अभी आपने अलका याग्निक और उदय नारायण की आवाजों में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं

0: सुनते हैं कमर्शियल स्पेशली जनाब गुलाम भाई आपके नाम और आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम होगा, तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को कमर्शियल के बाद।
1: 24 hours a day, बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

जी दोस्तों, अभी आपने अलका यकनिक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। वाजिद भाई एडर्सविल से फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और जनाब नज़ाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। आप कह रहे हैं आमिर भाई, आप तो आप पंखा लगा के बैठे हुए होंगे कमरे में, या एसी लगा होगा, और हम तो काम कर रहे हैं, और काम ही है कि गाड़ी में बैठ के इधर उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस ये चक्कर चल रहा है। पसीने से शरबूर हैं। और जनाब क्या, और मैं क्या करूं यार, अब ये क्या हो सकता है, इसका कोई हल नहीं है। बस ये है कि इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये गर्मी हमें फिर शायद मिले ना मिले। तो एनीवे, आई कैन अंडरस्टैंड, काम करना हो या वैसा, तो गाड़ी में तो वैसे भी बड़ी बहुत धूप लगती है, और उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बंदे को। तो यू आर राइट के जब मैं भी गाड़ी में बैठूंगा, जाहिर है ऑब्वियसली कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही जो टेम्परेचर आई होता है गाड़ी में, वो ज़्यादा ही कोई गर्मी लगती है। तो एनीवे, अब क्या हो सकता है, आपको कोई प्यारा सा गीत जो है वो सुनाते हैं, ताकि आप जो है वो ध्यान आपका गीत की जानिब चला जाए, गर्मी से हट जाए। तो आपके नाम भी करेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का। जनाब आपने भी फ़ोन किया, और आप भी अपने तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से आपके दोस्तों के नाम भी करते हैं। और ये क्योंकि अब कमर्शियल आने वाली है, और मुझे छोटा सा गीत चाहिए, तकरीबन 4-4.5 मिनट का, तो वो गीत जो है प्ले करेंगे। तो हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले भी मिस काले दे रहे हैं फ़ोन के साथ, आँख मचोली खेल रहे हैं हमारे फ़ोन के साथ कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो आपका भी लेते हैं जनाब। मैं तो सोच रहा था बाद में पुराना गीत लगवाऊँगा, उसके साथ नाम जोड़ूँगा, तो चलिए इस गीत के साथ भी आपका नाम जोड़ देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू की मत भरी आवाज में प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बजा रही हैं 11:45, यानी कि 11:45। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत होगा। चौधरी मनीर साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से, और जनाब गुलाम भाई, सफीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त संदा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: ऋषि's vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com. Sunrise Radio.
3: Sunrise Radio. The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से को आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी प्रोग्राम का ये दूसरा जो हिस्सा है इसे भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीतों से सजाया जाए। तो जनाब, अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं जनाब प्रोग्राम को, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत खान साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपसे ज़्यादा बात नहीं हुई, छोटी सी बात हुई लेकिन अच्छी हुई। तो जनाब आपके नाम करते हैं, आपका शुक्रिया। आप हमेशा फ़ोन करके सिर्फ जो है वो लाइव मुझसे थोड़ा सा बात करते हैं और ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह आपको सलामत रखे। और उसके बाद अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आपने भी तमाम सुनने वालों को, तमाम दोस्तों को सलामत किया। तो जनाब आपका सलाम पहुँच गया, गीत भी पहुँचने वाला है। और इस गीत को हिट ऑफ द आवर की शक्ल के गीत को आप दोस्तों के नाम करता हूं। और उसके बाद इकराम भाई, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आप भी इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को और कोशिश होगी आप दो घंटों का जो सफ़र बाकी बचता है उसमें अच्छे और मेयारी गीत पेश किए जाएं। पहला गीत तो तेज़ ही होता है, बाकी बाद में फिर मिले जुले होंगे, कोई तेज़ होगा कोई स्लो होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, मस्ती भरा गीत था, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:14, यानी कि 12:14। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आ गई है और सोनिया बहन बर्मिंघम से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपसे बात तो नहीं हो पाई लेकिन आपकी कॉल मिस हो गई मुझसे। और उसके बाद नुतान भैना, आपका भी शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके साथ भी बात नहीं हो पाई, माजर चाहता हूँ। और थोड़ी देर के बाद आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा गीत पेश करता हूँ। आबिद भाई, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। आप इस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप के साथ आपके साथी काम कर रहे हैं और साथ में सनराइज रेडियो को भी सुन रहे हैं, तो आपके नाम गीत, चलिए ये भी गीत कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट गीत जो प्ले करने जा रहा हूँ वो आपके नाम ज़रूर करूँगा। तो खान भाई और अब्दुल क्यूम साहब, शुक्रिया आप दोस्तों का भी। और गुलाम भाई, आपके नाम भी और आप सभी सुनने वालों के नाम भी, साइमा जी आपके नाम भी। माजरा चाहते हैं, ये गीत पहले ही चला दिया, नहीं चलाना चाहिए था क्योंकि कमर्शियल का टाइम है और कमर्शियल के बाद ये गीत आप सुनेंगे।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं जनाब अगले गीत की जानेब। नसरीन साहब, फोन करने का शुक्रिया। आप अपनी बिटिया आसमा के लिए गीत सुनना चाहती है। दोनों की तबीयत कुछ नासाज है, हम दुआ करते हैं अल्लाह आप दोनों को सेहत दे। और आने वाला गीत आपके नाम। हीरा खान साहब, शुक्रिया एक बार फिर फ़ोन करने का आपके नाम। प्यारी बहना जीत कौर, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया। आप कोई मेहदी हसन या इस तरह का गीत सुनना चाहती हैं, आपके नाम भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आने वाले गीत से जो है दिल बढ़ाइएगा। उसके बाद शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। तो आपके नाम भी करेंगे। और सोनिया बहन, आपके नाम भी। आबिद भाई, आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे। और रीता बेटिया, आपने जिस गीत की फरमाइश की, ज़रूर प्ले करेंगे आपके लिए। आप अपनी मम नौतन साहबा के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो आपके नाम भी करेंगे। और खान भाई, आप फिर फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करेंगे। गुलाम भाई, आपकी जानिब से स्टाफ के नाम भी करेंगे। तो इसी गीत को मूना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: तू

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप दोस्तों के लिए, तो आप दोस्तों के नाम करूंगा, सभी सुनने वालों के नाम करूंगा जो इस वक्त सन्दा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, हमारा साथ निभा रहे हैं, उन सब के नाम करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

जी दोस्तों, अभी आपने अनुदा पडवाल और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अब चलते हैं अगले गीत की जानेब, और प्यारा सा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए। और जनाब रीटा बेटिया, मैं भूला नहीं हूँ आपने अपनी अम्मी के लिए जो गीत सुना चाहा, क्योंकि पुराने गीत की आपने फरमाइश की है, तो आप की मम्मी के लिए पौने पे जाके क्वार्टर टू पे जो कमर्शियल के बाद गोल्डन ऑल्डी का टाइम होता है, उसमें वो गीत ज़रूर शामिल करूंगा लता जी का, तो आप सुनते रहिएगा। और अब मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इफराज आपके नाम करेंगे। और इसके साथ साथ इकरा साहिबा आप सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए, तो ये गीत आपके नाम भी करेंगे। हाजरा जी आपके नाम भी करेंगे, अमरीन साहब आपके नाम करेंगे, और आबिद भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत, बहुत ही प्यारे अंदाज में आप सभी सुनने वालों के नाम।

बहुत ही प्यारा सा गीत प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया। अब जल्दी में चलते हैं क्योंकि कमर्शियल का टाइम आने वाला है और हम चाहेंगे ये छोटा सा गीत आप जल्दी में सुन लें और एंजॉय करेंगे इस गीत को।

0: जी दोस्तों अभी आप उधर नारायण को सुन रहे थे इसके साथ ही चलते टाइम चेक कर लेते हैं
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं जनाब इस वक्त 12:46 हुआ चाहते हैं यानी कि 12:46 तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद रीटा बेटिया अमेरिका में आप सुन रही हैं आपकी मम जो हैं वो यहां होती हैं और ब्रेडफोर्ड में और उनके लिए आप अपना फेवरेट गीत जो आपकी मम का फेवरेट गीत है वो आप सुनना चाहती हैं उनकी नज़र करना चाहती हैं तो लता जी का गीत कमर्शियल के बाद रीटा बेटा आपकी जानिब से आपकी मम नौतान साहबा के लिए होगा और साथ में हीरा खान साहब खान साहब शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले और हीरा अपनी प्यारी बहना जीत कौर आबिद भाई सोनिया बहन इन बर्मिंघम और जनाब अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑल वाले चौधरी मनीर साहब चक्की वाले चौधरी मुजफ्फर साहब वाजिद भाई एडर्सफील्ड से और जनाब गुलाम भाई आप की आपके नाम भी करेंगे और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे आजरा जी आपके नाम भी करेंगे और कवल सभा आपके नाम भी करेंगे तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल कमर्शियल के बाद रीटा बेटिया की पसंद पे उनकी अम्मी नौतान साहबा के लिए जो गीत होगा आप सुनेंगे तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल कमर्शियल के बाद गीत गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। रीटा बेटिया, आपकी पसंद का गीत, पुरानी फिल्म मेरा साया तेरा साथ रहेगा से लिया हुआ ये गीत आप के लिए पेश किया, आपकी जन्म से आपकी मम के नाम किया, तो ये गीत एंजॉय कीजिएगा।

0: दोस्तों साथियों ये आपका अपना सन्ना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और इस आवर में सभी मस्ती भरे गीत होंगे जनाब, तेज तेज फास्ट फास्ट गीत होंगे। ये आखिरी आवर जो है ये ताकि जगाए रखे हमें, यहाँ भी क्यों काफ़ी गर्मी है बाहर और अंदर भी जाहिर है कि गुनूद सी छाई हुई है, तो इसलिए अभी इस आवर में आपके लिए फास्ट फास्ट गीत होंगे, मस्ती भरे गीत होंगे, तो ज़रूर साथ निभाइएगा, साथ दीजिएगा। तो चलेंगे जनाब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करेंगे हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, मस्ती भरा गीत सुना, और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो है वो बता रही है 1:13, यानी कि 13 मिनट्स पास्ट वन। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। और इकराम भाई, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, प्रोग्राम को पसंद करने का। आपके नाम गीत करेंगे, मस्ती भरे गीत होंगे अब। और रिजवान भाई, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, तो आपके नाम भी करेंगे। और नतान भेना, आपने भी फ़ोन किया, दोबारा शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, आपके नाम भी तो चलते हैं। और जनाब गुलाम भाई, आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी, और मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इफराज, आपके नाम भी। और इस वक्त बाबर शाह पे 3 शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को कमर्शियल के बाद।
2: Notice the way fans shout at football matches.
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: नफ्सें ज़ायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

जी दोस्तों, सुदेश भोसले, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना और अब चलते हैं अगले गीत की जानेब। इकरा साहिबा आप सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, हुमीदा, रुबैना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए आपके नाम भी करेंगे और जीशान भाई आपके नाम भी करेंगे। उज़्मा जी शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। मस्ती भरा गीत है और आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। नुतान बहना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपनी बहन से बात करके, और आने वाला मस्ती भरा गीत भी आपके नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन मेरी तरह आपने भी इस गीत को एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद जो गीत पेश करने जा रहा हूँ वो फेवरेट गीत है मलिक इम्तियाज साहब आपका और आपकी पूरी टीम का। इकमाज है मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, अफराज, आपके नाम भी। और अशफाक भाई शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करते हैं। और इसी गीत को जनाब शफीक भाई आपके नाम भी करते हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का। और रहीम भाई आप कह रहे हैं कि मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ, बड़ा मस्ती भरा प्रोग्राम है और बड़ा अच्छा लगा तो आज सोचा आपको फ़ोन कर दूँ। तो शुक्रिया रहीम भाई, आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। मलिक गुलाम भाई आप

आपके और आपके पूरे स्टाफ के नाम और आबिद भाई आपके नाम और आपके स्टाफ के नाम और उसके बाद जनाब इसी गीत को आजरा जी आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ इस वक्त नजमा इफ़त नाजिया उम्मीदा रुबीना बुशरा इकरा ताज़ीम जायदा साइमा सुन रही हैं उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं जो है वो कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग और मेरा और आपका साथ दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा रह गया है तो ज़रूर निभाइएगा, साथ दीजिएगा। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

0: क्या गीत था, क्या गीत था रीता बेटिया, आपने कहा मस्त गीत है, वाकई मस्त गीत है। उम्मीद रखता हूँ कि आपके साथ साथ सभी ने इस गीत को एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं, अब वक्त हो चुका है जोहर की अजान का, तो सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जनाब, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम बचता है। अभी हमारा और आपका साथ तकरीबन 15 मिनटों का बाकी रह गया है और कोशिश होगी इन 15 मिनट्स में हम आपके लिए अच्छे प्यारे और म्यारी गीत जो है वो पेश करें। तो जनाब अब चलते हैं सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है कमर्शियल के बाद। तो कमर्शियल के बाद जो गीत होगा, नूतान बेना आपके नाम होगा, रीटा बेटी आपके नाम होगा, हीरा खान और जनाब तारिक जुल्फी साहब और जनाब हमारे खान भाई और उसके बाद जीत कौर बेना सुन रही हैं, उनके नाम भी आबिद भाई, ग़ुलाम भाई और सोनिया बहन इन बर्मिंघम आप भी सुन रही हैं, आपके नाम भी करेंगे। चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, वाजिद भाई हडर्सफील्ड से हैं और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। स्पेशली जनाब इस वक्त तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और हमारे प्यारे दोस्त जो जनाब इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जनाब हमारे जो साथ वोक भी करते हैं और काफ़ी दोस्त होते हैं जब वोक करने जाते हैं शाम को, और इन सब दोस्तों के साथ जनाब काफ़ी गपशप भी होती है और साथ में चलते भी हैं साथ में। और जावेद भाई की बात हो रही थी आप पुलजूरा टाउन, वो इस वक्त जनाब जो हैं वो सुन रहे हैं तो उनके नाम भी करेंगे। और मनशा इकबाल साहब पोठा वाले हैं वो भी उनके नाम भी करेंगे। सिकंदर भाई हैं पुलजूरा टाउन वाले वो भी। और जनाब दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा।

जी दोस्तों, इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। उम्मीद रखते हैं आज का प्रोग्राम आप साथियों ने एंजॉय किया होगा। अब मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात संडे सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह नेगेबान एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
2: Official Media Partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? Sunrise Radio के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: म्यूजिक।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
7: Nazre yun mili unse ke dil ne kaha

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
2: चाचा केड़ा चाचा
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can try.